0: क्या बात है
1: तेरी फोटो वेख वेख होके रहा पर दी तू की जाने तेनू वे मैं किन्ना मिस कर दी तेरी फोटो वेख वेख होके रहा पर दी तू की जाने तेनू वे मैं किन्ना मिस कर दी।

वेखो तुसी साका जल्ले आदे बागदा होया सी जुल्मे उत्थे खूनी रागदा ऊधम जहे जोदे उड़वारा।

0: पता लगा है कि पूरे एक हफ्ते की हड़ताल की है। दसिया जा रहा है कि उन्होंने अपना दुध थाना च ही रोक लिया है। उन्होंने नहीं पसंद पैरां विच बेड़ियां कस कस के मशीना राही कढ़ना। बंदे नू बंदा बन के चोण लई कहा गया है। जेड़ा इस तरह कर रहा है सिर्फ उस कोल ही दुध मक्खन पनीर आदि महंगे पा विक रहा है। बाकी सारे हाथ मारते नजर आ रहे ने, मिन्नता कर रहे हैं, पर गावां ते मझां ने साफ इनकार किया है। उन्हां दियां मंगां अपने परिवार नाल रहना, अपने बच्चियां नू दूध चंगाउणा, जदों दूध बंद हो जाए लवारिसा वांग ना छड्डण दी मंग ओह अजे भी कर रहे ने। ए कदों बंद होवेगी इसदा अंदाजा किसी नू नहीं है। साडे नाल जुड़े रहण लई तुहाडे सारयां दा धन्नवाद।
1: कविता लिखना प्यारे श्रोतियों कोई सौखा काम नहीं। ते कविता लिख के फिर श्रोतियां दे विच संचारना, श्रोतियां दे विच लेके जाना ते उनां दे दिलां दे विच धस जाना, यानी कि उनां दे दिलां दे उत्ते राज करना, जिहड़ा आ ओह बिरला बिरला शायर जिहड़ा कर सकदा है। ते साडी शायरा जिहड़ी हुण साडी काम महफल दे विच आ रही है, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੱਕੀ ਜੀ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਗਜ਼ਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ।

है ये किस काम का, तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा है ये बस नाम का। आदमी तू अगर आदमी ना बना, तो ये जीवन भला है ये किस काम का।

जुबा से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबा से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का।

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

चन सितारे खुशियां कीड़े नहीं आहे रास कदे। शीशे अगे खड़के जद भी चेताया बीतदा बीत पल।